श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो,

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: को डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चांद के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गई।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: जान भी दे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
0: अच्छा जी।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: होएगा ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बता, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा थीम स्टार थीम चॉइस। और थीम के जो शब्द हैं वो हैं मैं बता रहा हूं आपको यानी माशूक माशूका लैला और मजनू राजा रानी महबूब महबूबा दिलबर और दिलरुबा। ओ माय गॉड इतने प्यारे प्यारे इन शब्दों पर गाने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूं कि आज मैं कौन सा सबसे ओपनिंग गाना लूं। बहुत ही कंफ्यूजन के बाद सबसे पहले मैं सोचा कि चलिए अपने महबूब को मैं सलाम करता हूं। तो पहले सलाम करता हूं।

बिल्कुल मेरे महबूब तुझे सलाम और एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं आप सबके बीच 10 बजे तक ही रहने वाला हूं, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं डेली की बात कर रहा हूं, एक दिन की आज की बात नहीं कर रहा हूं। और जैसे 10 बजे प्लीज़ आप लोग मुझे याद दिलाइए कि 10 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे जाना होगा, क्योंकि डेली डाट सुनने से अच्छा है कि भाई अब अपना मैं इन समय सुधार लूँ। इसीलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे 10 बजे आप लोग मेरा घंटिया बजाना शुरू कर देंगे, 10 बज गया मैं बंद कर दूँ, ओके। और बहुत से दोस्तों के डिमांड छोड़ने वाले भी है, क्योंकि वैसे डिमांड की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे दोस्त सरफराज जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम है। अशोक पाल जी है, वेलकम है आपका भी अशोक पाल जी। और एम ताहिर साहब जी का मैसेज है मेरे पास, वेलकम है आपका भी। और जुड़ने वाले में हैं हमारे सर्वेश भगत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। और राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर वाले जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और भाई मुबारक हुसैन जी, मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में मिसाल अंगद जी हैं, वेलकम करते हैं। और हाँ, अगर कोई दोस्त मुझे मैसेज के थ्रू अगर गाने भेजेगा तो प्लीज़ वो मैं भूल जाऊंगा, आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिएगा तभी मैं उसको प्ले करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इधर मैसेज वाला मैं भूल जाता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग फिर बाद में ना कहिए कि अमन जी मेरा गाना छूट गया चाहे कुछ भी। वैसे बहुत से दोस्तों का छूटने वाला है, लेकिन अभी मैं बताता हूं, इधर वाला तो बिल्कुल छूटेगा जो लोग मैसेज में भेजेंगे, ओके। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में हैं हमारे ये सुनीता गोप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आमना खान जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, खुश आमदीद। और जुड़ने वाले दोस्तों में ब्रजेश, क्या नाम है, राधा कृष्ण गोप जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है राधा कृष्ण गोप जी। ब्रजेश कुमार जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है ब्रजेश कुमार जी। और ये कमल शंकर पांडे जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी कमल शंकर पांडे जी। और जुड़ने वाले में दोस्तों में है आत्माराम पाटिल जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये विष्णु चंद्र जी है, बहुत बहुत वेलकम है विष्णु चंद्र जी। और लिखते हैं कि आई एम गौरी, व्हाट, आप गौरी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, ओके वेलकम है आपका भी दीपक कुमार गायकवाड़ जी। जुड़ने वाले दोस्तों में और भी नाम शामिल मैं कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे जाकिर खान जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सड़ी जी जुड़ चुके हैं फाजिल का पंजाब से, आपका भी वेलकम है, ओके। और जुड़ने वाले दोस्तों में नाम है गोविंदा खंडाते जी, बहुत बहुत वेलकम है गोविंदा खंडाते जी। और नीतू शरण जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और गजानन सलोकार जी बहुत दिन बाद आ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और तीन चार दिन कहाँ गायब थे आप, वो तो अब आप ही बताएंगे फिलहाल, और बता रहा हूँ फिलहाल मैसेज खोलो यार, बहुत देर कर लगा रहा है। ईश्वरलाल जी जुड़ चुके हैं, ईश्वरलाल मेहर जी बहुत दिन बाद आए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, अभी वेलकम है आपका भी। और अनिल कश्यप जी, क्या आपका गाना थीम पर है, मुझे तो लग नहीं रहा, जरा एक बार कन्फर्म जरूर कीजिएगा, वो शब्द होने चाहिए लैला मजनू, जैसा कि एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कौन कौन से शब्द हैं, वो शब्द है यानी माशूक, माशूका होने चाहिए, लैला मजनू होने चाहिए, राजा रानी होने चाहिए, महबूब महबूबा होनी चाहिए, और दिलबर दिलरुबा होने चाहिए। इन शब्दों शब्दों पर ही गाने प्ले होंगे। निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मनीषा शर्मा जी आपका भी वेलकम है, और मीना कुमारी जी आपका भी वेलकम है, और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ऐसे आज को क्या ही बताऊं, सभी गाने एक से बढ़कर एक। और मुझे सबसे पहली जो डिमांड दिख रही है, मतलब यहाँ पे टिया जी की, और टिया जी लिखती हैं अपने महबूब की तस्वीर बनाने के लिए। जी मैं भी अपने महबूब की तस्वीर बनाने चाह रहा हूँ, लेकिन इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल अपने महबूब की तस्वीर बनाने के लिए मैं चला रंग गुलाबों से चुराने के लिए। वैसे ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, मुझे ये गाना याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा जरूर से। और लेकिन फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। अभिषेक तिवारी लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, नमस्कार, वेलकम करते हैं आपका भी। और बागेश्वर निशा जी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी, प्रिया जी अपने गाने में शामिल की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत साहब लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और रणवीर सिंह जेठालाल जी ये लिखते हैं गाना बहुत ही अच्छा लगा है। गजानंद सोका लिखते हैं कि अपने महबूब की तस्वीर बनाने के लिए गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और इस वाला लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ना, मतलब यानी कि जो यानी शब्द मिला है मुझे सुंदरता की मूरत, वो मुझे इसी गाने से मिला है, मतलब ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, बिल्कुल। और जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ मुझे बस कुछ याद नहीं आता है, वो मुझे फिल्म की पूरी मतलब स्टोरी याद आ जाती है, क्योंकि वो यानी कैसे कैसे अपने महबूब की वो तस्वीर बनाता है ना, यानी बिना देखे हुए उसे वो ख्वाब आते हैं और वो ये तस्वीर बना देता है, और वो उसकी रहती है, मतलब वो ख्वाबों की रानी यानी मेरी सुंदरता की मूरत जी। फिलहाल इन्जॉय द ट्रैक थोड़ा सा, ओके।

और यहाँ पे विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम रुक रुक के आ रहा है। व्हाट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपका नेटवर्क जियो का हो, तो एक बार मोबाइल को ऑफ करके ऑन कीजिए या स्टॉप करके फिर से प्ले कीजिए, हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आजाद अंसारी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है और जी मजा आ गया सुन के। और उनके बाद से दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी रेडियो हॉटस्टार में हमारी प्रोफाइल में लास्ट में जो इनसिक्योरिटी क्वेश्चन है उसे कैसे भरना है मुझसे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा।

फिलहाल दो दोस्तों की डिमांड, दिलरुबा, ओ फूलों जैसी दिलरुबा, बागेश्वर निषाद और ईश्वर लाल मेहर जी, जय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना सच में मुझे बहुत ही पसंद आया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है सर जी, मजा आ गया। और गजन सरकार जी लिखते हैं कि दिलरुबा खुले जैसे दिलरुबा, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, मजा ही आ गया है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वाह मस्त सॉन्ग है, एकदम दिल खुश हो गया है, मजा आ गया है। ईश्वर लाल लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे प्यारे फीडबैक देने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत खूबसूरत है। ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ संदीप सुतार जी का प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि सुनना चाहते हैं तू लिख दे मेरे दिल पे, मैं लिख दूँ तेरे दिल पे, दिल भर दिल भर।

0: बिल्कुल तू लिख दे मेरे दिल पर, मैं लिख दूं तेरे दिल पर, दिल पर और बहुत से फीडबैक भी आए हुए मेरे पास। निशांत आया, बोले कि गाना तो सच में बहुत ही प्यारा है। और यानी बागेश्वर निशांत जी, थैंक यू, थैंक यू अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और ये क्या कहते हैं सर्विस भगत जी,
1: अरजय अमन सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, इसका पहले दो भाई का मिली जुली फरमाइश में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: और इस गाने में भी हमारे निशांत राय बोले जी शामिल हैं, काजल सरकार जी भी यानी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि संदीप सुता जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, तू लिख दे मेरे दिल पे। ब्रजेश कुमार लिखते हैं वाह वाह क्या गाना है, क्या प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। ईश्वरलाल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है। और ये क्या कहते हैं भाई,
2: आरजे अमन सर जी, मैं गाना को चेक किया और ये मेरा जो गाने का डिमांड था वो बिल्कुल भी आज के थीम पे फिट नहीं है, और मैंने दूसरा गाना भेज दिया है। और सर मैं क्या हुआ था ना, मेरी ही गलती थी, मैंने वंशिका जी के शो का जो नोटिफिकेशन था उसको देख लिया था, उसमें मैंने आयशा जुल्का और मुमताज जी का जो थीम था तो मैंने आयशा जुल्का जी का गाना सेंड कर दिया था, ये मेरी ही गलती थी, थैंक यू आपने मुझे बता दिया, नहीं तो आज तो मैं छूट ही जाता।
0: बिल्कुल, और वैसे भी आपने ऐसा गाना भेजा है मजनुआ पिटा था, और कोई गाना नाम मिला ना उड़ा थोड़े थोड़े, आज इतने अच्छे अच्छे गाने छोड़कर भाई आप यानी कि मजनुआ के यानी पिटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये कोई बात हुई। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ गया है। और निशांत है वो लिखते हैं कि मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है वो यानी पाँच दोस्तों की है, हमारे नंदलाल यादव जी है और कौन कौन से दोस्त हैं, यानी कि ब्रजेश कुमार जी हैं, रवि लोधी जी हैं और राहुल जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं, सुनवाते हैं।
3: नमस्ते अमन सर, गुड इवनिंग, मैं नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
0: वेलकम जी।
3: सर जी मुझे भी एक थीम चॉइस पर गाना सुनना है जंगल लव मूवी से।
0: ओके।
3: और गाने के बोल है, लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे
0: क्या बात है,
3: वही

0: सर ये गाना आपको और जितने मेरे दोस्त हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा सर। धन्यवाद,
1: वेलकम करते हैं आपका भी। और इसी गाने में जैसे कि मैंने कहा कि राहुल पासी जी भी शामिल हैं, राहुल पासी जी के साथ साथ यानी कि ब्रजेश कुमार जी शामिल हैं और रवि लोधी जी शामिल हैं और नंदलाल जी तो हैं ही, तो आप यानी कि चारों दोस्तों की पसंद मैं सुनवा रहा हूँ। और अगर वो नहीं कर रही हैं तो भाई आजकल AI का जमाना है, बस AI से बुलवाइए कि आई लव यू है कि नहीं। फिलहाल इंजॉय द ट्रैक, लैला ने कहा जो मजनू से। और आजकल जो AI, ओ माय गॉड कितना प्यारा वीडियो बनाता है, सच में दिल खुश हो जाता है।

0: अब जी और चार पांच भाई हैं, सभी भाई मिली जुली फरमाइश में शामिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: वेलकम जी।
0: और आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
1: जी। वेलकम जी आपका भी। और राहुल पासी जी कहते हैं
2: गुड इवनिंग अमन सर जी, आपने मेरा सॉन्ग प्ले किया लैला ने कहा जो मजनू से, मजनू ने कहा जो हीर, रांझा ने कहा जो हीर से, आई लव यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जो जिन्होंने ये सॉन्ग सुनवाया है उनको भी धन्यवाद।
1: वेलकम जी आपका भी। और मेरे पास बाबूलाल राजा लिखते हैं सारे दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यार लगी है, और राजेश कुमार लिखते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश सुपर डुपर हिट लगी है, और गजानंद लिखते हैं कि नंदलाल जी और सभी दोस्तों की पसंद बहुत अच्छी लगी है, शुक्रिया इस गाने के लिए। राधा किशन को लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि सर जी ये गाना मेरा फेवरेट है। हाँ भाई सभी का फेवरेट है, और जिसमें आई लव यू शब्द वो फेवरेट ना हो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी ओके ठीक है, देखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। और रवि लोधी जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि लैला ने कहा जो मजनू से, गाना बहुत खूबसूरत है। अगला जो डिमांड है वो प्रियंका जी का, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना।

0: बिल्कुल, ये सिलसिला हमेशा ये निकला लगातार रहेगा कि भाई के जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना। भाई मैं तो वही कह रहा हूँ, आई लव यू सो मच मेरी सुन दाता की मुरा जी, यानी खुशी जी। फिलहाल फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं। रेनबो लवर जी लिखते हैं कि अमन बाबू गुड इवनिंग जी, जी गुड इवनिंग सर जी, और कैसे हैं? और लिखते हैं आई लव यू सॉन्ग जब यानी कि चल रहा था उस समय से मैंने आपके चैनल को ट्यून किया है और मजा आ गया सुन के। ओ धन्यवाद देते हैं आपका भाई। और ये क्या कहते हैं
1: अर्जय अमन सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर फरमाइश है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। गजानन सरकार लिखते हैं कि ये प्रियंका जी की पसंद, किसी दिन बनूंगी राजा की रानी, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चला है, थैंक यू सो मच नीतू जी आपका। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं किसी दिन बनूंगी, बहुत ही प्यारा डिमांड है ये प्रियंका जी का, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और आत्माराम जी लिखते हैं अमन सर जी आज के जो थीम के शब्द हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, लाजवाब लाजवाब गाने सुनने को मिल रहे हैं जी, बिल्कुल सुनिए। राजीव यानी चौधरी जी लिखते हैं कि मेरी पत्नी यानी नीलम भी जुड़ गई हैं, अच्छा उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि विपाशा खुराना जी का है, विपाशा खुराना जी। अब ये हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये यानी कि विपाशा मतलब शायद यानी कि लेडीज ही होगी मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं जो भी है। मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, गाना सुनना चाहती हैं, सुनवा रहा हूँ इंजॉय कीजिएगा। मेरे महबूब मेरे सनम चाहिए मेरे ख्याल से होना चाहिए, यस। और यहाँ पे जबरदस्त वाली बारिश हो रही है,

0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाजिश। और राहुल पासी लिखते हैं कि यानी कब मैंने ये सोचा था गाना, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। पहचान सुरकार जी लिखते हैं कि मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया, मेहरबानी सनम, ये गाना भी अच्छा लगा है। और फिलहाल ये फिर बैठ
1: झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। और इसके बाद मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। ये दोनों गाने बहुत ही सुपर सॉन्ग थे और बहुत ही मज़ा आया इस गाने को सुन के। और फरमाइश करने वाले दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको भी बहुत धन्यवाद। बारिश हो रही है अगर आपके पास तो इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है कि पूछिए नहीं, और करंट भी नहीं है हमारे यहाँ।
0: नहीं तो हमारे यहाँ तो यानी कि करंट भी है, एसी भी चल रहा है, और मैं तो मजे से गाने का एंजॉय कर रहा हूँ। माय गॉड, फिलहाल अगला जो डिमांड है वो ये बिंदिया जी का है, सुनना चाहती है चांद के पार। चलो बिल्कुल, चल रहा हूँ लेकर आपको चांद के पार।
1: हाथ निभाओ तुम ऐसा कर, भरोसा कर लो तुम।
0: अरे कर लो, कर लो, कर लो भरोसा।
1: साथ

0: बिल्कुल चांद के पास चलो। वैसे फीडबैक मेरे पास सर्वेश भगत जी का ही आया हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई?
1: जय मां सर जी, बिंदिया जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी। और लग रहा है कि सबकी हाथों में दर्द हो रहा है। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी किरण दलाल जी का है, और सुनना चाहती है दिलबर कहूं या दिल तुझे, मतलब क्या गाना है, सच में ये गाना मुझे बेहद पसंद है। थैंक यू सो मच।

0: बहुत प्यारी डिमांड।
1: दिल भर कहूं के दिल कहूं या दिल रुबा तुझे, डर है खुदा का वरना मैं तो कहता।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाला दी फीडबैक में बस बहुत सारे आए हुए बाबूलाल लिखते हैं कि ये डिमांड बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गजानन जी लिखते हैं कि दिल पर कहूँ या दिल तुझे, बेहतरीन लाजवाब गीत सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि चांद के पास चलूं भी गाना अच्छा लगा, और दिल पर कहूँ या दिल तुझे ये भी गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: सिर्फ एक कमेंट, ये गाना जो अभी चल रहा है ये सॉन्ग ऑफ द डे होना चाहिए।
0: अच्छा जी,
1: ये मेरी व्यक्तिगत निर्णय है और बाकी का तो आप खुद बता देंगे सर।
0: ओके बाबा,
1: थैंक यू।
0: चलिए तो बनाते हैं इसी बात पर, आपकी बात तो आई भाई, आपकी बात तो सलाखों पर, और यानी कि किरण, यानी मतलब यानी कि नाम है उनका किरण जलाल जी, आपको बनाया था आज का सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो। इस गाने के लिए एक गाना और भेज सकती है जल्दी से। फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी शिवम जी की पसंद, और शिवम जी इंजॉय कीजिए।

वेलकम एक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक है लेकिन मैं यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही प्यारा प्यारा गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं शिवम जी को। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि भाई यानी कि शिवम जी के पसंद बहुत ही सुपरहिट लगी, लाजवाब लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। और मेरे पास उनका डिमांड आ चुका है, यानी किरण यानी कि जो जो थी यानी कि दलाल जी, उनका गाना आ चुका है तो मैं उनके गाने को प्ले कर जाता हूँ और फिलहाल इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट हिस्सा जो आपको दीवाना बना दे, क्योंकि मुझे डिमांड ज्यादा लेने हैं और गाने थोड़ा सा कम प्ले करने, इसीलिए इसके लिए सॉरी। और बरजस कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि वो दिल रुबा वाला गाना भी मुझे अच्छा लगा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये शिवम जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। सर्वजीत शेट्टी लिखते हैं कार्यक्रम शानदार चल रहा है और ये फीडबैक।
1: अर्जय अमन सर जी, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी, और काजल झक्का जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, इंजॉय कीजिए काजल झक्का जी।

0: फिलहाल पेपर फीडबैक आ चुके हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय मां सर जी, काजल झा दी छोटी बहन अपने गाने में शामिल की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे ओम नारायण राय लिखते हैं कि काजल झा का ये गाना मुझे झक्कास लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिला, दिल खुश हो गया है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: तोहके करी ले प्यार, जिए के ना बा हमके तोहरे बिना, जिए के ना बा हमके तोहरे बिना, इहे कहीं बार बार। हो
1: बहुत ही बढ़िया गाना, थैंक यू सर।
2: ये फिलहाल अगला जो डिमांड हो रही है आप सबकी भोजपुरिया महारानी यानी आरजे सोनी जी का गाना।

0: बिल्कुल सच में गाना सुनकर आरजे सोनी जी कहां कहां से सुन सुन के लाती है भाई। गॉड, बहुत ही प्यारा गाना था आपका। और ये फिर सुनते हैं सर्वेश भगत जी का।
1: आरजे अम्मा सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू
0: जी आपका भी। और यहाँ पे कैसा जगह जी, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले कर।

0: आरजे सोनी जी का डिमांड बहुत ही बढ़िया है और आठवां अजूबा है महबूबा हमार, बहुत ही मस्त गाना। तो अमन भैया हम ये बोलेंगे कि लगे हाथ एक अजूबा आप भी कर दीजिए और मेरे मजनुआ को भी थोड़ा सा पिटवा दीजिए इसी क्रम में।
1: यानी पिटवाई वाला काम हम ना करें भाई, हम ना करें। ओम नारायण राय लिखते हैं कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ आपके शो में और गाना मस्त है जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। रेनबो लवर जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है, मन गदगद हो गया। हाँ जी, वो तो हम भी कह रहे हैं भाई, मेरा भी मन में गदगद हो गया है। वो मेरी आठवां अजूबा है ना मेरी सुंदरता की मूरत जी। लेकिन फिलहाल अगला जो डिमांड मैं इन्हें प्ले कर रहा हूँ वो इन महक जी का है। महक जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बनाया। राहुल पासी जी लिखते हैं कि महक जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल, उनकी डिमांड हमेशा हट के आती है भाई, आती है तो महका जाती है हॉट स्टार को। फिलहाल ये
1: अरजय अमान सर जी, महक जी अपने गाने में शामिल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैंने कहा था कि मेरे पास करंट नहीं है, तो आपने कहा था कि हमारे पास तो सब है, बिजली है, एसी है, सब है। तो इसी पर मैंने कुछ अर्ज किया है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि हम जानते हैं कि आपके पास एसी है, हम जानते हैं कि आपके पास एसी है, बट अब हम भी छत पे आ गए हैं और यहाँ हवा देसी है।
0: अच्छा,
2: थैंक यू भैया,
0: वाह वाह वाह वाह वाह। ओके ओके, फिलहाल यहाँ पे फीडबैक और भी है मेरे पास। बाबूलाल जी लिखते हैं कि महक जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, और गजानंद जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद बहुत ही प्यारी है। अगला जो डिमांड है वो मुझे मिल रहा है ऋषिता जी का, सुनना चाहती हैं मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे निशांत है, बोलते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं सुपर स्वीट सॉन्ग, दिल गदगद हो गया है। वो हो राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है। और सरवजीत शरीफ जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम तो जबरदस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ आरती तिवारी जी का, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो आपको दीवाना बनाने का जाना चाहिए थे, आरती तिवारी जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा डिमांड के लिए। और भाग्यशन साथ चले थे कि बैक टू बैक सभी सुपरहिट गाने चल रहे हैं। और राहुल पासे चले थे कि आरती तिवारी जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और ये फीडबैक सुनते हैं हमारे यूट्यूबर लाइटिंग आनंद जी क्या कहते हैं।
1: हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ इस गुलशन में जिसे सजाया है आप सबने अपने प्यारे प्यारे गीतों की फरमाइश से, प्यारे प्यारे फूलों से। धन्यवाद
0: जी, वेलकम करते हैं आपका भी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी पूजा भास्कर जी का है, सुनना चाहती हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

आई होप कि ये गाना शायद आज के थीम पर नहीं है, तो फिर आपने ये कैसा भेज दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और ये है दो दोस्तों की डिमांड, एंजॉय कीजिए।

और प्लीज यानी लिंक भेजने से पहले एक बार गाने को सुन लीजिए, फिर मेरे पास लिंक भेजा कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी बिना देखे हुए आपके लिंक को ही डाउनलोड कर लेता हूँ और प्ले कर देता हूँ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड जी क्या कहते हैं, सुनते हैं इनकी।
1: अमन जी, जैसा कि आप आज लेट आए और जल्दी जाने की बात कर रहे हैं, तो इस मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देर से आना जल्दी जाना ए साहिब ये ठीक नहीं। पर आपकी आदरणीय अम्मी क्या बोलती है, बेटा टाइम से जाना और टाइम से खाना। अम्मी बोले ये ठीक सही, ठीक है ना
0: जी? बिल्कुल बिल्कुल।
1: धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: वेलकम जी आपका भी। अब क्या करूं, मतलब मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वैसे तो मैं सोचा था जी पहले आऊंगा, लेकिन मतलब कुछ आप समझ ही रहे ना। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, मिसाल अंकल जी का सुना रहे हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल आग लगी है। वैसे पूजा भास्कर जी, आपके गाने क्लिक कर दोबारा भेजा है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, टाइम मिलेगा तो जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगा। दीपक कुमार गायक क्वालिटी लैला में लैला धमाकेदार गाना सुनने को मिल गया है, और राहुल पासी लैला में लैला कैसी में लैला लाजवाब गाना सुनने को मिला है, और गजानंद जी के लैला में लैला ये गाना बहुत ही शानदार लगा है, मजा आ गया रईस फिल्म का सुनने को। मिशालंगा जी को धन्यवाद। अगला जो डिमांड है शक्तिलाल कुशवाहा जी का है, सुनना चाहते हैं हम, है पाता जी के

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं और दीपक को मैं एक बार दी देखेंगे ये भुजपेत यानी कि तड़का बहुत ही अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ यानी कि प्राप्ति शर्मा जी का गाना है, तो एंजॉय कीजिए। अहो राजा सुनना चाहती हैं, सुना दिया।

0: तो यानी कि कल के स्टार्टअप तो वीक है, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, उसके लिए मैं बाद में यानी सोचूंगा तो बताऊंगा, कल बताऊंगा। बागेश्वर निषाद लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, और ये क्या कहते हैं भाई, इनकी सुनते हैं।
1: काहे हो काहे बियावा ना रचैबू, बियावा से पहले सलमान खान लगत रहनी, अब का शक्ति कपूर थोड़ी लगत नहीं, अभी हम उहे बानी।
0: अच्छा जी, ये बात बात फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे जो तीन दोस्तों का है, आत्माराम पाटिल जी, अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी, ये इनका मतलब एक ही डिमांड है सभी की। पहले अशोक देशमुख जी का ऑडियो सुनता हूँ मैं।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, और गाने का बोल है माशूका माशूका मैं ऐसी माशूका। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
3: जी अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है आज का अर्जुन, और गाने का बोला मासूका मासूका मैं तेरी मासूका। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, अंदर भगत, सुन कुमारी, मन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता के मूरत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे सोनी जी, आर जे मिस्पर आर जी, आर जे रत्ना जी, और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में शामिल है, सभी को सुना जी का जयराम जी।
4: आज प्यारे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर मैं स्टार थीम चॉइस में एक गीत लेके आया हूँ सर। गाने के बोल है माशूका माशूका मैं तेरी माशूका। सिंगर है सर अलका याज्ञिक और बप्पी लहरी जी। वैसे इस गीत को म्यूजिक भी दिया है बप्पी लहरी जी ने।
0: अच्छा।
4: और आर्टिस्ट है सर जय प्रदा और अमिताभ बच्चन। तो सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मौत को, वैसे हमारे दोस्त है सैयद यूनुस जी, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, दत्ता कदम जी, रामन खिलाड़ी जी और जितने भी अपने हॉटस्टार सुनने वाले हैं सभी के लिए आज का गीत समर्पित है सर। तो बिल्कुल सुना दो।

0: वेलकम है को रेडियो हॉटस्टार जो दीवार हमारे बागेश्वर निशा जी लेते हैं सर सर्विस भगत जी को पसंद लाजवाब लगी है धन्यवाद देते हैं अशोक दशमुख जी लेते हैं धन्यवाद हमें सर आपने हमारे फरमाइश का गीत सुनवाया आपका बहुत बहुत शुक्रिया गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अशोक दशमुख जी सर्विस भगत जी आत्माराम जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है और राहुल पासी जी लिखते हैं मास्टर का गाना बहुत ही प्यार लगा है अगला जो डिमांड है ज्योति खटवटे जी का है सुनवाते हैं ज्योति जी इंजॉय कीजिए अपने प्यारे गाने को और मैं कोशिश करूंगा कि आधा घंटा आज और यानी कि रुक जाऊंगा क्योंकि अब एक दिन और ही यानी डांट सुन लो कोई बात नहीं एक दिन और सही
1: Listen and enjoy Melon Chat.
2: तुझे लैला तुझे हीर मैं कहूंगा सरेआम
0: बहुत सुन आवाज इसमें

0: ये गाना इतना प्यारा है कि ज्योति खंडवाले जी आज के बनती है सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भले तो जी गाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन गाना बहुत ही प्यारा है।
1: Listen and enjoy Melody Queen Shreya.

मेरा अगला जो डिमर में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि शारदा सिंह जी का है, और शारदा सिंह जी सुनना चाहते हैं मेरे महबूब मेरे जाने जिगर, बहुत ही प्यारा गाना है, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

मेरी जाने जिगर फिर वैसे फिर मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं दीपक मगर गायकवाड़ी जी देखते हम धन्य हो गए अमरीशपुरी जी की आवाज में गाने सुनकर और पहली बार सुने हैं गाना सच में आवाज अमरीशपुरी जी ने ही दी है। हाँ जी बिल्कुल अमरीशपुरी जी ने ही इस गाने में अपनी आवाज दिया है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ज्योति खरवाल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरे महबूब मेरी जाने जिगर बहुत ही शानदार गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बता रहा हूँ फीडबैक, हाँ यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि नहीं, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ओके फिलहाल नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ यानी कि विभूति भूषण जी का, विभूति भूषण शरण जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बिल्कुल। और जुड़ चुकी है मेरी यानी कि नंदनी माँ जी, बहुत दिन बाद बहुत बहुत वेलकम है आपका। और मेरी तो आंखें तरस गई थी इंतजार में, तो माँ जी आपको मेरा यानी सत मेरा प्रणाम है। हाँ, आज मैं 10 बजे ही जाने वाला था बिल्कुल, लेकिन अब मैं आज भर के लिए यानी रुक जा रहा हूँ, मतलब यानी 10:30 बजे तक। अगले दिन से मैं 10 बजे ही जाऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे याद दिलाते रहिएगा माँ जी प्लीज़। और दीपक को मैं एक बार लिखते हैं कि नहीं टिफिन लेके मैं नहीं आता। ज्योति जी लेते कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और दोस्तों का भी शुक्रिया। और अगला गाना इन्होंने भेज दिया है मुझे, फिलहाल मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है ये है हमारे यानी कि सर्वजीत शेट्टी जी का, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, तू एक रानी है वैसे विवेक मेरे पास आए हुए हैं, और
1: मैं एक राजा हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते कि आने से उसके आए बाहर वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। जागीर खान जी लिखते हैं कि मेरी महबूबा जब भी सुनो अच्छा ही लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस गाने को बहुत अच्छा लगता है। गजानंद जी लिखते हैं कि आने से उसके आए बाहर गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और अशोका बहन जी जुड़ गई है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अगला जो डिमांड है हुकुम चंद जांगर जी का है, सुनना चाहते हैं एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, बिल्कुल रानी बनेगी, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: इतना

0: बिल्कुल, तुम मेरे सपनों की रानी बनेगी फिर है, मेरे पता है। और ये विष्णु चंद्र जी लिखते कि हम भी तो राजा रानी वाला है जी। वो तो देखिए आपका गाना है मेरे पास, लेकिन उसका जो इन क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उस गाने को नहीं प्ले कर पाऊंगा, उसके लिए हम सॉरी। मंगेश दस मुझे लिखते हैं कि अर्जमन जी प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ है। और राहुल पासित जी लिखते हैं कि मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, गाना बहुत अच्छा लगा है। और आज़ाद मुमताज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़,
1: एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। क्या जमाना था वो भी, मज़ा आ गया गाना सुन के। धन्यवाद रेडियो हॉट स्टार और अमन जी का। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: धन्यवाद। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है यानी के गजानन श्लोकार जी का। ओ मेरी महबूबा, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट एटा, जो दीवाना बनाते हैं उसी पर भेज देते हैं कि ओके ओके ओके ओके ओके ठीक है, मैं कोशिश क्या करूँगा, क्या करूँ, मुझे सब ढूंढना पड़ता है ना। राहुल पासी जी लिखते हैं कि एक ना एक दिन ये कहानी बनी, गाना बहुत अच्छा लगा है। और गजानन सरकार जी लिखते हैं कि आदरणीय मंत्री जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये फीडबैक।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन भाई।
0: वालेकुम सलाम।
1: हमारे चाचा है जब्बार, इनको ये गाना बहुत पसंद आया सुनकर। अच्छा। बहुत तारीफ कर रहे हैं इस गाने की और आपकी भी।
0: थैंक यू सो मच। उनका भी, जब्बार जी का भी। अगला जो डिमांड है वह हमारे अजय भगत जी का है, सुनना चाहते हैं मेरे महबूब क्यामत होगी, एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल ये फीडबैक।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूँ। और आपने मेरा भी गाना सुनवाया अमन सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो गाना चल रहा है, ओ मेरे महबूबा तुझे जाना है तो जा, ये हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी का गाना था और उनके गाने में मुझे याद किया, तो मैं गजानन सालोकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी, आज की जो थीम चॉइस के सभी गाने अभी तक बहुत अच्छे तरह से सुनवाए और बहुत अच्छे अच्छे गाने सभी हमको सुनने को मिले। अमन सर जी, आज की शाम बेहतरीन हुई और जो 5 बजे का कार्यक्रम था आरजे आकांक्षा जी का, वो तो कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हो गया।

बिल्कुल अब इसी बात पर तो मजनू पिटाएगा। दो दोस्तों की डिमांड है, यानी मीना जी का है और साथ ही साथ अनिल कश्यप जी का है, दोनों की डिमांड एक ही है। तो सुनवाते हैं मजनू पिटाता, इंजॉय।

0: और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं अजय भगत जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और अजय भगत जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: प्रोग्राम में लगे चौका और छक्का, जब प्रोग्राम में बजे भोजपुरी तड़का, जियो राजा जियो।
0: बिल्कुल, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ गोपाल इन पड़ीदार जी का है। और गोपाल पड़ीदार जी सुनना चाहते हैं लैला को भूल जाएंगे, भूल जाइए।

0: बना दे दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक हैं, फिलहाल तो ये सुनते हैं।
1: थैंक यू अमन भैया मेरे सॉन्ग को प्ले करने के लिए। और 10 बजे के बाद आप बोले थे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अगर रह भी गए तो मजनवा को पीट ही दिए आखिरकार। थैंक यू भैया।
0: और यहाँ फिर और पास जी रहते हैं, लैला को भूल जाएगा ना, बहुत ही प्यार लगा। अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी की और साथ साथ क्या नाम है, इन विष्णु चंद्र जी हैं, दोनों दोस्तों की डिमांड एक ही है, तो सुनाऊंगा, इंजॉय कीजिए।

अगर इस गाने में दो दोस्त ना होते ना तो ये सॉन्ग अर्थ डे का विनर बन जाता। बिल्कुल दो दोस्त है ना इसीलिए, क्योंकि दोनों को बनाने से दिक्कत है, एक रहता तो बना लेते। और कविता जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है कविता कुमारी जी। राहुल पासी जी लिखते हैं कि विष्णु जी का गाना और

0: शरारत भी है मेरे महबूब में
1: जी, हर चीज मेरे महबूब में है। और देखते हैं, कोई बात नहीं है। और आशीर्वाद मैंने लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरे डिमांड को प्ले करने के लिए। और जाकिर खान जी लिखते हैं, शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने पहले भेजा, ठीक है। चलिए हम आप ही को सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बनाते हैं भाई। जाकिर खान जी, अकॉर्डिंग टू यू आप ही यानी हकदार होते हैं, कोई बात नहीं। पहले आप ही को, आप हैं तो पहले आप ही को बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जल्दी से अपना गाना भेज दीजिएगा मुझे। और फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी, इंजॉय कीजिए गाने को।

0: खूब नगमा है। और अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ओके नहीं बोलूंगा। हाँ आपने समझाता कि मुरा जी तो बोल सकता, यानी खुशी जी। फिलहाल दीपक कुमार जी अगला नंबर आप ही का है, सुनवा रहा हूँ आपके गाने को, एंजॉय कीजिए। दीपक कुमार जी हाँ ये गाना तो गाने स्टार्टिंग के लिए था।
1: लोग राजा मुझे कहते हैं लोग, अरे कहते हैं लोग।

0: लीडर बोर्ड में एक मैं देखता हूँ आज किन का नंबर आने वाला है।
1: अरे होशियार
2: राजा हूँ तो सदा लगा बाद मुलायजा चाल फिर मैं ऐसी दिखाऊं आ ही जाए मजा वाह वाह वाह। राजा हूँ तो सदा लगाओ बाद मुलायजा चाल फिर मैं ऐसी दिखाऊं आ ही जाए मजा। दोस्तों दुश्मनों मेरी जय बोलो जय बोलो।

और दीपक कुमार गायकवाड़ जी, अगर मैं गाना ये पहले सुना होता तो सबसे पहला गाना आज आप ही का प्ले होने वाला था, लेकिन अभी तो लास्ट में प्ले हो रहा है। कोई बात नहीं, सॉरी, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी शर्मा जी का प्ले कर रहा हूँ। और शर्मा जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

आकर्षित होया मैं प्लास्टिक फैंटास्टिक बम्बास्टिक बनावट लगा मैं चक्के में टक्के दिखा मैं मार्केट में वैसे ही भारी गिरावट बकरे लड़ा मत पुरानी कहावत जो करता मोहब्बत नहीं रहता सलामत।

0: लला कितने हीरो
1: और हमें दीपक कुमार गायकवाड़ जी देते हैं कि आपने छोटा सा गाना प्ले किया इसलिए आपका छोटा सा शुक्रिया। क्या करूं, टाइम का बहुत है कमी है ना, इसके लिए हम सॉरी। और जाकिर जी ने अपना अगला गाना भेज दिया है थम के पास, ठीक है गाने को जरूर मैं प्ले करूंगा, लेकिन पहले मैं कॉल लगाता हूं अमना खान जी को, उसके बाद आपका गाना प्ले करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, फिर से लगा।

बिल्कुल नेटवर्क इशू है। कॉल लगा रहा हूँ, लग जाए तब ना। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कॉल तो कनेक्टेड दिखा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत वेलकम है आपका, आमना खान जी। और कैसी हैं आप? हेलो, फिर आवाज़ गायब। क्या प्रॉब्लम आ गया है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज़ तो आई थी आपकी। हेलो हेलो हेलो, वहाँ स्पीकर में जो देखिए ना, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी तो नीचे एक स्पीकर की तरह बना होगा आपके बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट साइड, उस पर एक बार क्लिक करके फिर से दोबारा क्लिक कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। दोबारा कॉल लगा ही लेते हैं।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। आई होप के
1: जी,
0: नेटवर्क
1: अब आ
0: सही
1: रही
0: है।
1: आवाज?
0: बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, शायद नेटवर्क इशू है ना?
1: नहीं, मैं तो यहाँ टेरिस पे आई हूँ अभी।
0: अच्छा, टेरिस पे आ गई ना, तब अब ठीक है, अब नहीं कटेगा फाइनली।
1: नहीं, मैं जब से यहीं खड़ी हूँ।
0: अच्छा, वहीं पे खड़ी हैं। फिलहाल आवाज़ नहीं आ रही थी ना, इसीलिए दिक्कत थी। कोई बात नहीं, फिलहाल आ रही है।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत आपको बधाई हो एंड आपका वेलकम है। ओके, और बताइए कैसी हैं आप? माई गॉड, फिर आवाज चली गई। ओहो, यानी कुछ तो इशू लग रहा है मुझे, जरूर कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है या मतलब कुछ भी एप्लीकेशन इशू हो सकता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हेलो,
1: हेलो हेलो
0: हाँ
1: हेलो हेलो
0: हाँ
1: हेलो,
0: हाँ आ रही आ रही
1: आ रही है ना?
0: हाँ हाँ आ रही आ
1: हाँ
0: रही।
1: हाँ जी, मेरा तो एकदम यहाँ से एकदम सही है।
0: बिल्कुल ठीक है, फिलहाल गाना बता दीजिए कौन सा सुनना चाहेंगे आप।
1: वो
0: हाँ
1: आपने ना, अच्छा ठीक है, ठीक चले। वो आप एक वर्ड भूल गए, अभी राजा रानी बादशाह, बादशाह भी था है शायद, राजा रानी तो
0: हाँ
1: शहंशाह वाला सॉन्ग,
0: अच्छा, मतलब यानी कौन सा गाना?
1: अजीम शान शहंशाह।
0: अजीम शान, अजीम शान शहनशाह, ये कौन सा गाना है? शायद जो था अकबर का, आई होप। फिर आवाज नहीं आ रही, क्या पता कटा है कि नहीं, लाइन तो है। फिलहाल मैं अजीम शान शहनशाह प्ले कर रहा हूँ।
1: अभी आ रही,
0: हाँ
1: अभी आ
0: हाँ
1: रही, अभी आ
0: हाँ
1: रही।
0: आ रही आ रही आ रही, अभी आ रही है। बिल्कुल,
1: हाँ,
0: ये फिल्म का नाम है शायद जोधा अकबर ना। हेलो हेलो हेलो हेलो, बहुत इशू आ रहा है एप्लीकेशन में, शायद अब पता नहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। कोई नहीं, गाना प्ले करता हूँ, एंजॉय कीजिए।

आमना खान जी ने बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया है और कविता जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है, एकदम लवली सॉन्ग है। और जी बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुबारक हुसैन जी लिखते हैं कि अच्छा ओके कोई बात नहीं। फिलहाल आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, ये दो दोस्तों की डिमांड भी है और ये गाना मतलब सभी लोग सुनना चाहते हैं, सुनवा दिया।

हाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि मैं प्ले कर रहा हूँ खुशबू जी का। खुशबू जी एंजॉय कीजिए। ओह माय गॉड, शायद गलत गाना प्ले कर दिया। दीवाना दिल ढूंढ रही है।

ऐसे फिलहाल मैं बहुत सारे गाने को इन प्लेलिस्ट में लगा के जा रहा हूँ, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। और ये गाना सच में मुझे बहुत पसंद है, इंजॉय करते हुए जाइए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।